तेरा सचिया बाद जियो में सब तेरा कौना नक सब तेरी वड़ी आई वर कौना नक सब तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना गया ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा वाहिगुरु जी का खा

जी दे चरण कमला वचन वास बख्शना पिछे परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला रखनी। बेअंत संगता वालों आप जी दे हजूरी विच अमृत वेले तो इस समय तक

जी गुरु निवास अंतर्यामी सच्चे पातशाह जी महाराज जो धन धन साहिब श्री गोबिंद सिंह महाराज आप जी के पावन दरबार तक सचखंड श्री हजूर साहब विखे कीर्तन की हाजिरी भरदे हुए हैं। आप जी संगता लो बेअंत माया हाजिर हुई, जिस जाने चो माया हाजिर हुए, सुख जाने भरपूर करने, गुरसिखी नामदान की बख्शिश करनी याद।

दारिगत दुआ मसान बास करे हुई करत है। घुगमट बासी लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मुन साधई मरत है। बिंद के सदैयता ही जिकी बटैया देद बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है। अंगना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बन जारी छेद छाना सब दूधा धारी पौन के हारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के फछैया धन लोभ के तजैयत तो गौवन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बटैया देत बगला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तेनो जानी पे वखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कह नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कह आदिश फिरैया देत भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के फछैया सो चकोर साम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ दिन दुआ कहत सब कौल नाब कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन चारी लिखी के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूट पीट तन गूढ़ ता को भेद पावे पूजत न दाहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटा धारी सती सच बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पाव भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करे हुई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विषण के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार किते असुनी कुमार किते अंसा अवतार किते काल बस भय है। पीरे ओ पिताम्बर किते गाने ना परत एत भूम ही कह हुए के फिर भूम ही मिलाए है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई घोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक दो बजी कपट भेष बोसती अनेक दारी वावत है। शीस गौ कहा भय मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सो तो न डंडौ दया से डांग अत तीस गौ कहा भयो रुगी जो पेड़ा जो रहे उर्द मुख मान तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को भचैया सादा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षर सो माटी को भजैया बोल पूछ लीज जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए डांड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जोग एक ठोर वास करे काग और चीर देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक स्वांगी गहूं जो किया बराकी बन कब हूं संन्यास भेष बान क्या दिखावई। गहूं पौन हारी गहूं बैठ लाए तारी गहूं लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पर लगावे बारी कहूं दंड धारी हो के लोग न भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है ना जन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर औ गदहा अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक ठारन सो मारही। कहा भयो फांसी डार बुढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही।
ताप के सहित जो बिपाइए अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो बिपाइत जाप देव भूतनाथ देव तुहि।

सवेरा सकर हीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही की सेव सब ही कपूर देव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पे अनेको भ्रमाओ है देवता देव जा छ कंदरव तुरा कहे दुनिया रे न्यारे देशन के

जैसे एक आग ते कनु का कोठ आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में बिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नाद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ माश केते उनको करत भाष केते अच वच हो सपच उठ जाहेंगे। केते नव बीज अच भाष को कर

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज जीव तेज में तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हार देवता विरोध हार दानो बड़े बोध हार बोधक प्रबोध हार जाप सी घास हार चंदन लगाए हार जो आचार पूज हार बाहन चढ़ाए हार लापसी गा हार गोरन मनाए हार मटी मटली बहार भीतन लगाए हार छापसी गाय हार गंधर्व बजाए हार किन्नर साब पाच हार।

सबुदेव विखे भवान या चित्रे नारायण नारंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग भेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नी अच्छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय

देह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औखदी रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सातकी तामसी हो कहूं जोग विद्या दरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच्छ विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की

चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी वस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं वीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज

शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जेह पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जेह करम भरम नहीं धर्म ध्यान जेह नेह गेह नहीं व्योतबान जेह जात पात नहीं शत्रु मित्र जेह नेह गेह नहीं चेहन चित्र जेह रंग रूप नहीं राग रेख जेह जन्म

परास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उजरंत वेद जय अलख।

तन सीत खाम वरखा सहंत कई कलब एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावतन पार कई उर्ध बाह देसन भ्रमांत कई उर्ध मध पावक झुलांत कई सिमृत सासरत उच

वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहु वेद रीत जग याद करम कहु अग्न होत्र कहु तीर्थ धरम कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ परम सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई

कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जो करियत कहूं फिरत चार कहूं करत जछ गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र।

अगंज आदि देव है अभंज भंज जानिए भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदैव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप।

नपात चिहन वर्ण है, अदेघ शेख वेग है, सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमीजमान के बिके सदीव करम भरम है, अद्वेख है, अभेख है, अलेख नाथ जानी है, सदीव सर्वठौर में विशेख।

है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है जन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है।

है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है, अभूत वेग है बलिय रूप राग रंग है, न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है अनंत तेज जानिए, भूम बेज है सदा।

न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को लाओ है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज सी विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है, न आद है न गाद है न व्याध को विचार है, न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है, न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा।

जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहयो बिराज धराज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्णव के बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील।

दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्वके प्रतपाल सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्वके अनकाम सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वके निजभाम सर्वभोक्ता सर्वजुगता सर्वकर्म प्रवीण सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वकर्म अधीन सर्वसंवृतं सर्वशास्त्रं सर्ववेद विचार दुष्टहर्ता विश्वहर्ता आदरूप अपार दुष्टदंडन पुष्टखंडन आदि देव खंड भूमा का चले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देव अपार श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सब मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावई शिव रुद्र ओमुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास अनक सनत कुमार काय गय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आद अंत न मध जाको भूत बब भवान सत द्वापर तृतीया कलयुग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुर गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये दह पार नारद आदिक वेद

केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगम था हे एक वृते जय जय हो सी मासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निगंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर

घंट का बिराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिग भाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल दज मंत्र रिछ सब न भजे रूह रणंग जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन चंड चक्र धन आदि पुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्ये धूमराज प्रधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाण मते जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आदि जुगाद अगाध गते

के बाघ बुबंग के भुजा फरंग के शुद्ध गति जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते तछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दूष प्रचंडन खंड अखंडन।

न जाय जह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन फे कहे नाम तास है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चेहन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल उर्धंग बिरहद सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई गोट इंद्र जह पान हार कई गोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल कर नित संतु बार गनी मन गारे पच पशु नक नाग नराधि सर्व समय सब को व्रत पार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दुखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दुखन का दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके बद मापद भेद कतेब अभेद उचारे रोज ही रात भी जो कदरा जग रोख रुहान की रोज न डारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंगेव न भेव लख्यो भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान सेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पद

लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद माप दे है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सभोतन नेह विरक्त अगेह अच्छ है। जान को देद अजान को देद जमीन को देद जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्रीपद माप तले है।

कह दो सौ सो बेट ही के बड़ बीज बचावे। जच भुजन सो दानव देव भेव तुम सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब है सिर न्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहु को ने तही ने तह वेद बतावे। गोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रव नारिक से सब हो मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं बार उमापद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो देह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब है बजहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध अपेख अद्वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ कोट की ए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरयो कर बेद संबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छेत्र छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महाशत्रुन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ताके दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे।

जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, गे सृहन नर है, विश्व को भरण है, गया पदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार वार हूं को पार, जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे हसी हल विधावे, पूर्व बिना पार पावे, असत्य अनाज है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेवनाद्वय अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा, महाजोग हूं को जोग है, धरैया तुम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरा वध छास के, जिसे छत्रा नेर छपा कर, कैसी छब काल इंद्री के गोल के, हंसनी सी सिंहारू हीरा सी हो सैनावाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंधु रूल के, पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर, सोरासी सुरंगाबाद नी के झोल ही झूल के, चंपा सी चंदेरी गोल्ड चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसीपुर, सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हला पानेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार पकान सी बिरंदाबाद, कीरत तिहारी की उजियार सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी, मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है, वंखरी गंधारी गोरख अखरी कर दे जाचारी, पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज, जहां जहां जाइयत है, पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दे अता बिनाद की।

0: प्यारे केस दे नाल जुड़िया हुई आ एक खालसे दी पहचान है केस है ते केस नू साफ करन दे लई ते अपा कंगा रख दे आ ओ तो बाद दस्तार अपा धारण कर दे हा ए सब तो पहला प्यारियो खालसाई बाणा है सो ए बाणा वेख करके ओ भंडारी सिंह कहन लगा
1: गरीब निवाज बतावो
0: कहन लगा के गरीब निवाज सतगुरु महाराज आप जी हुण दसना करो
1: कारण कर इनहु रखावो
0: ते केड़ा कारण है जिस करके आपने पक्का ही ए मूल बन दिता पक्का ही कह दिता के जी मेरा सिख जेड़ा केसा धारी होवे मेरा सिख दस्तार धारी होवे क्योंकि गल प्यारियो केसां दी दस्तार दी चल रही है बाकी बाणे प्यारियो ए अपा बाद दे विच धारण करदे आ मैं एक बेनती करा प्यारियो बाकी जेड़े ककार जेड़े ए तुहानू ना बाजारों खरीदने पैणगे कोई बंदा इनू बनावेगा कोई इनू वेचेगा

ती रात खसम वसा रहते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सदगुर सतपुरखा बिना करो गुर पास हम की रे कर्म सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हम

मल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, दृग जीवै दृग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धर्म मस्तक लखया लखास। धन धन सत संगत जित।

धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आल।

चौपई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कहे जय भादो सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पक्ष

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बा स्वर्ग वर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौले हो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सतद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर

साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पांच प्यारे उचाली मुक्ते सर्व शहीदों मरी।

सदा संगे अभंगम विभूते देख गोविंद व्याप्त नान गुण गुरु गोविंद सिंह श्रीकाल प्रति सहाय दरबार में तुरु दरबारा सच खंड निरंकारा लक्ष्मण दरबारा।

नगर गोबिंद गुरु का, नगर गोबिंद गुरु का साहबजादे इत्थे बैठे आ, पंज प्यारे इत्थे आ, सारे साधु सारे भगत।